0: 干个仗，
1: 也是干那里的干的妈妈，也是在的帮我一把手。
0: 心里边啥个把山那孙儿打，满大白拿着的皮里娃，一边啥就有的没来嘛来。说的了也无你把地图了拉开滚得把大天个让我们的说的无地你的把他们的把的也是你们大盘出白的白骨是的是你的做他给个的骨
2: 啊我没有个高的生活感法律家我能咋了我没有能其他无别的哦राजा जंगलमा शिकार गर्दै एक्लै गएका थिए तिर्खाले जल खोजी खोजी वनमा हेरेर घुम्दै गए घाँस काट्नु भनेर गए कि भिरामा टिको खस्यो पातैमा जस

छोरा श्री अभिमन्यु जन्मना गए रानी सुभद्रामा मारिएर नमा कुल छिए भयो बचेनन् कोही तहाँ रानी श्री अभिमन्यु की पनि थिइन् श्री उतारा गर्विनी तिनै बाट पछि परिचित भए गर्वे टुरा बनी नारायण।

がりかな。いへらまへらまへらまい。まさぱんどばいおるけばえばねでき、うたぱき、パラマッマ。さてじわしゃぱさり、らじえうにれ。さてじわしゃぱさり、やだばはる、じょうびぷらかすらぱれ。साराचिये भए प्रभासत्री रामा देखे जसै कृष्णले दिक्माने मनमा कुलचिये भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण होइ भविष्णु पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

खाई धर्नाली ठानी प्राण जाय मलाई तिम्रा यौवन रूप कहे प्यारी मेरो यो मनली दियौ मोह पारी रसवास देऊ म गुमसाम जानेछु तिम्रा पुत्रैलाई गद्दी दिनेछु।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

अब चारी कोट मा TVS को अचम्मई को डील TVS संग को एक्सचेंज मा पाउनु होस अचम्मई को अफर हरू 2083-84 को रोड टैक्स फ्री पुरानो साधन को बजार मा कतै नपाइने उच्चतम मूल्यांकन आकर्षक क्याश डिस्काउंट नागरिकता र लाइसेंस को भरमा फटाफट फाइनेंस को सुविधा त्यो पनि ईएमआई दैनिक मात्र 124 रुपैयाँ मा यति मात्र होइन एउटा आकर्षक हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ मिति यही असार 21 गते देखि 26 गते सम्म चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिका 3 कुमारी बैंक को बिल्डिंग मा पावर राइट पब्बाल फाइदा मा एक्सचेंज गर्न आउँदा पुरानो साधन को ब्लू बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछ

0: California. Extreme energy drink.
1: हाईटेक नर्सरी में उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी र विभिन्न बिरुवाहरूको भरपर्दो गन्तव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहाँ लोर्स

मेरे पिहरा ले नाता समझे पानी नाता समझे पाने मैं समझूला दिन को दिन छत पानी।

परेरा सालाई नीरस माग्या मालाई नीरस लाग्या मालाई झुलके उमाया

अब चारी कोट मा टीवीएस को अचम्मै को डील टीवीएस संग को एक्सचेंज मा पाउनु होस अचम्मै को ऑफर हरु 2083-84 को रोड टैक्स फ्री पुरानो साधन को बजार मा कतै नपाइने उच्चतम मूल्यांकन आकर्षक क्याश डिस्काउंट नागरिकता र लाइसेंस को भरमा फटाफट फाइनेंस को सुविधा त्यो पनि ईएमआई दैनिक मात्र 124 रुपैयाँ मा यति मात्र होइन एउटा आकर्षक हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ मिति यही असार 21 गते देखि 26 गते सम्म चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिका 3 कुमारी बैंक को बिल्डिंग मा पावर राइट फब्बाल फाइदा मा एक्सचेंज गर्न आउँदा पुरानो साधन को ब्लू बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछ

0: दिल बोले तो
1: हाट हाट
2: हाँ यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील कर सील
0: टाइट वेरी टाइट।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

काली खानी सर काली खानी चौमा हुआ हाम्रो सुनखानी को गाउँमा चौवारा को ठुलो

ओड़ा का घोड़ा प्रदेश का बाघ केन्द्र महाती छन् ओड़ा का घोड़ा प्रदेश का बाघ केन्द्र महाती छन् जेसुके गरुण बोल्दैन जनता जादै नै जाति छन् जेसुके गरुण बोल्दैन जनता जादै नै जाति छन् कसरी सुध्रिन्छ यो देश कसरी सुध्रिन्छ।

इसारो बरको चौड़ी गाई को लारी को चौतारी माजामा थाउदाय लापिराती तागोला चौतारी माजामा किचुटान तो सिरी सीता माई को तेस्ताई छुटान हमरा

खाने का तो यो मने को साचा चीनी चिवरा को सारा सुना को डोका उगारे रे रिदा गई था को नी असारा अब खाने का तो यो मने को साचा गई था को नी असारा हस्त धन्यवाद मैले आएर यहाँ रेडियो सैलुमा दुई चारवटा गीत भरेर गएको छु।

मेरे पिहरा ले नाता समझे पानी नाता समझे पानी मई समझे उला दिन को दिन छाता पानी।

पशुपति देवता भंगेरी लाई उठा भंगेरी लाई उठा गौथाली लाए मोलो का।

नमस्कार रेडियो सजिलौ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम संवत 2083 साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 6 तारीख आषाढ़ 22 गते सोमवार षष्ठी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तासलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दस जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तुम लोग उजागर, राम दूत अदुल दबल्लाम अंजनी पुत्र पवन सुतराम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्मृति संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजौ ध्वज विराजई कांधे मुझे जन साजई, शंकर सुबन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूपधरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगाधर आया, हेम रूपधरी असुर संहारी रामचंद्र के काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे अज कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव कि ना राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताई मद फल जानु, प्रभु मुंद्री का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रखे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता अस्वर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रव रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटई मिर सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पड़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुं स्वरूप सियावर रामचंद्र शंकर जी बाजा, जय हनुमान जय बजरंगबली।